0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Zindagi mein na, the hardest confession ever to make is when you are in love with a same-sex person aur ab aap apni family ko bataoge kaise. Agar aapne apni zindagi mein aisa confession nahi kiya hai and you want to come out of the closet on radio, to let me tell you ki time ho gaya hai for...
3: The Secret Box.
2: और अगर आपका कोई भी प्राइड रिलेटेड कन्फेशन है देन आई हैव ऑल द नॉन जजमेंटल इयर्स टू हियर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप विद योर कन्फेशन एंड आई विल कॉल यू. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू नॉटी बॉय?
4: बढ़िया.
2: बढ़िया तो आप काफी हो. आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर भेजा था फेसबुक पर, आई वॉज लाइक दिस इज अ गाय आई वॉन्ट टू टॉक टू. सो अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. नाउ आई एम जस्ट हैंडिंग दिस ओवर टू यू. ठीक है,
4: मतलब मैं कैसे बताऊँ. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड मी लूजिंग माई वर्जिनिटी.
2: ओके.
4: आई डिड लूज इट टू माई कजन.
2: योर कजन? ओके, बट ये कहानी यही खत्म नहीं होती है क्योंकि Why don't you tell me more about it?
4: So my first sexual encounter was A with a male, B with my own cousin. Or when we were making out for the first time, so our parents came in there.
2: Oh wow! This is so crazy. पहले तो घर का cousin जो technically आपका भाई है, ऊपर से आप और आपका भाई, ऊपर से आपके मम्मी पापा आ जाते हैं.
4: But we were teenagers, so they also thought ki bachpana hai and everything.
2: Huh.
4: And they just let it pass.
2: Huh.
4: But the thing is, the main confession here is that it did not end there. And we continued to be in a skewed relationship sort of a thing.
2: It's not skewed at all. I mean, meri jo ex-best friend thi school mein, usse apne chacha ji ke bete se pyar ho gaya tha. So, like... प्यार तो किसी को भी हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है. प्यार तो अंधा होता है पुष्पा.
4: आई विश वो प्यार होता.
2: तो ठीक है यार, एटलीस्ट नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव. करेक्ट.
4: या
2: बट सो डज दैट मीन दैट यू आर नाउ अ होमोसेक्सुअल और बाइक्यूरियस या बाइसेक्सुअल या हेटरोसेक्सुअल?
4: आई एम आई थिंक आई एम अ बाइसेक्सुअल. आई हैव बीन इन रिलेशनशिप विद वुमेन एंड एज आई टोल्ड यू विद मेन आल्सो. So, I find myself bisexual.
2: Just for the fact that you were honest enough to make this confession, kya main aapko roshify kar sakti hu, please?
4: Please do it.
2: There you go, my darling.
0: You've been roshified.
2: I hope ki you have a great Pride Month ahead of you. And aapke to chances double ho jate hai na for a date because you are bisexual. So, it's also girls and also guys. And genuinely, all the best to you, yeah.
4: Yeah, and twice the amount of rejection I face. So,
2: oh,
4: yeah,
2: God, don't say that, you pessimist. It's twice the amount of date chances. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही है एक कन्फेशन लाइक माय मिस्ट्री कॉलर, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में बोर्डम हो रही है, रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब वो एक्साइटिंग नहीं लगता है. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी फन दैट यू गाइस कैन ट्राई टुगेदर. ओके, सो नाउ हियर्स द थिंग. आप अपने क्रश के साथ भी ट्राई कर सकते हो एंड देन इट विल टर्न क्वाइट स्टीमी, आई प्रॉमिस. बट अगर आप में वो एडवेंचरस स्पिरिट है, वाई नॉट. इसे कहते हैं द मोस्ट अमेजिंग गेम दैट यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद. दैट्स नॉट द नेम ऑफ द गेम. इसे कहते हैं द एफ्रोडीसियाक ब्लाइंड टेस्ट. तो इसके लिए आपको प्रॉप्स चाहिए होंगे, ठीक है. एफ्रोडीसियाक्स का मतलब वो खाने जो पुट यू इन द मूड फॉर लव. तो आपको लेकर आना है द यूजुअल फिग्स, स्ट्रॉबेरीज, डार्क चॉकलेट, एनी अदर काइंड ऑफ. वाटरमेलन भी माना जाता है एक एफ्रोडीसियाक है. यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट. यू कैन ऑल्सो गेट अ ग्लास ऑफ गरम मिल्क विद सैफ्रन इन इट, बिकॉज सैफ्रन भी एफ्रोडीसियाक है. द अदर प्रॉप दैट यू नीड इज प्रेफरेबली अ सैटिन का ब्लाइंड फोल्ड. अब आप अपने पार्टनर को या अपने क्रश को या फ्रेंड को हु यू वांट टू टर्न इनटू अ पार्टनर, उसे ब्लाइंड फोल्ड करते हो इस सिल्क ब्लाइंड फोल्ड से एंड देन यू ले आउट दिस एफ्रोडीसियाक्स. और अब आपके पार्टनर को गेस करना है व्हाट इज द थिंग दैट यू आर पुटिंग इन देयर माउथ. यू आर सच अ नॉटी पर्सन. नाउ दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच. नाउ टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस गेम. और वो बताने के लिए यू हैव टू फाइंड मी ऑन द ग्राम या ऑन फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानो मानो, डू व्हाट यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: थर्ड व्हीलिंग अर्थात की एक डेट पर जहाँ एक लड़का और लड़की है वहां पर एक तीसरा इंसान भी प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे आपके साथ कितनी बार हुआ है जिंदगी में कि आप डेट पर जा रहे हो साथ में आपका छोटा काका कजन भी साथ में आ जाता है। एंड दैट जस्ट किल्स द वाइब। इफ इट्स एवर हैपेंड टू यू आई वॉन्ट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टू टेल मी अबाउट हर थर्ड व्हीलिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ लाइन पर अर्चना है। हाय अर्चना।
3: हाय रोशी।
2: जीवन में आपसे बात करते समय मेरी जिंदगी में कोई ना आए अर्चना अर्चना कितने गंदे गंदे गंदे गंदे जोक्स क्रैक करती हूँ बट
3: नहीं यू कैन डू इट
2: आई कैन थैंक यू वेरी मच यू आर वेरी काइंड। आप जो ऐसे खिलखिला के हंस रहे हो आपके जीवन में हो क्या रहा है?
3: ओके मैं खिलखिला के हंस तो रही हूँ पर मेरे जीवन में बहुत भसड़ मची हुई है। और सो व्हाट हैपेंड मेरी फ्रेंड एक बंदे को डेट कर रही है तो वो पिछले एक डेढ़ साल से डेट कर रहे हैं ठीक है। सो उनके रिलेशनशिप की मैं थर्ड व्हील हूँ यू नो मैं right. जब से वो प्रपोज करना चाहते थे रिलेशनशिप में आए उनके एन नंबर ऑफ फाइट्स में आई हैव बीन पार्ट आई हैव बीन द कम्युनिकेशन ब्रिज यू नो कि उसकी बात उसको बताना उसकी बात उसको बताना उन दोनों का सॉर्ट आउट कराना एवरीथिंग बट द कैच हियर इज कि इन सब को करते करते ना आई बीन अट्रैक्टेड टू द गाय बिकॉज ही इज सच अ नाइस गाय एंड माई फ्रेंड ऑनेस्टली शी इज माई फ्रेंड बट शी इज अ you know, she doesn't deserve him. वो बेचारा उसके लिए सब कुछ करता है और वो भाव तक नहीं देती है मतलब लाइक एवरी टाइम शी वॉन्ट सम प्रॉब्लम कि वो उसको मनाए वो बेचारा 24 घंटे उसको मनाता रहता है और मतलब मैं भी मनाती रहती हूँ मतलब हम दो लोग उस बंदी को मनाते रहते हैं कि यार ठीक है और मुझे इतना बुरा लगता है उसके लिए आई थिंक समवेयर सिंपैथी समवेयर द वे ही केयर्स फॉर हर जिस तरह से वो उसको प्यार करता है वो सब चीजें देख के मुझे लगता है यार कि दिस गाय डिजर्व्स बेस्ट।
2: तो या इस गाय को भी ये लगता है दैट ही डिजर्व्स द बेस्ट एंड यू अर्चना आर द बेस्ट
3: मतलब देयर हैव बीन कपल ऑफ टाइम्स व्हेन वी हैड सच डिस्कशंस यू नो डीप डिस्कशंस ऑब्वियसली ये नहीं था कि दैट ही वांट्स टू डेट समबडी एल्स बट ये था कि यार ही डिजर्व्स बेटर ही डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड बेटर एंड आई थिंक अगर मेरी फ्रेंड के साथ वो लड़का ऐसा होता तो आई वुड हैव फेल्ट द सेम वे फॉर माय फ्रेंड यू नो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ये बात बताऊँ Because I know I will never treat him like this.
2: तो आपने इस जो सेटअप में राजश्री प्रोडक्शन जो आपके दिमाग में चल रही है उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि जब आप इस बंदे को बोलोगे कि यू डिजर्व बेटर एंड आई एम बेटर कम हियर किसी किसी तो वो आपको बोलेगा या किसी किसी कौन है तू गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड बन जा यू थिंक इट विल मैजिकली वर्क आउट लाइक दैट
3: नहीं आई एम श्योर इट विल नॉट एंड इट विल नॉट कम इन अ वेरी इजी वे देखो दो ही मुझे ऐसा लगता है दो ही चीजें होंगी या तो वो हाँ कर देगा या वो ना कर देगा
2: और बीच में आपने
3: मतलब अगर मैं नहीं बोलूंगी ना आई विल बी किल्ड बाय माय सेल्फ कि यार मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल दिस गाय
2: तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने इस बंदे को बता दिया और बंदे ने कहा कि क्या बोल रही है यार मैं तो तुझे बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और आपकी ये जो बेस्ट फ्रेंड है ये आपकी एक्स बेस्ट फ्रेंड
3: उससे पहले आप ही मेरा दिल तोड़ रहे हो डोंट से दैट
2: आई एम जस्ट सेइंग वर्स्ट केस सिचुएशन ओके लेट मी बी रियली ऑनेस्ट कि आपकी फ्रेंडशिप विद दिस गर्ल विल बी ऑन द लाइन जैसे ही आपने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस किए टू दिस जेंटलमैन इन क्वेश्चन आर यू फाइन विद द फैक्ट दैट यू विल
3: यार उसको तो बहुत मिल जाएंगे अभी उम्र ही क्या है हम लोगों की मेरे को थोड़ी रोज रोज प्यार हो रहा है किसी से एक साल हो गया नहीं बोला तब से
2: क्या बात है यार प्यार ऐसे ढीठ होता है मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर आपके प्यार में ऐसे

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड

0: बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saad Jeetu Raj, only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तो मैं स्कूल में थी एंड मुझे पता भी नहीं था कि अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं. हाउ डू यू टेल दैट पर्सन? एंड बिफोर आई कुड एंड अप डूइंग एनी ऑफ दैट, उसकी शादी उसके मम्मी पापा ने किसी और के साथ फिक्स कर दी. एंड बिफोर आई कुड इवन अंडरस्टैंड माई लव, हार्ट ब्रेक वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. लेकिन ये इतना ड्रामेटिक था, दैट्स नॉट इनफ. हाउ आई डेल्ट विद अ हार्ट ब्रेक वॉज इवन मोर ड्रामेटिक. मैं जाकर लेकर आई एक बड़ा डब्बा पेंट्स का और मैंने पूरी दीवार पर, चारों दीवार, मतलब मेरे कमरे में जितनी दीवारें थी, और फिर फाइनली एक लैडर लेकर सीलिंग पर भी उसका जगह जगह नाम लिख दिया. टू द पॉइंट वेयर माई मॉम एंड डैड रिफ्यूज टू कम इन टू द रूम बिकॉज दे थॉट कि मैंने उसे एक हार्ट ब्रेक का म्यूजियम बना लिया है. ये तो मेरी लव स्टोरी / हार्ट ब्रेक स्टोरी थी. But whatever is your heartbreak story, that's what I'm interested in, Morning Glory. और उसे बताने के लिए, let's just compare notes नहीं, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है Mirchi Roshi, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead, darling, do what you need to do. I will not break your heart. And while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Zindagi mein na, the hardest confession ever to make is when you are in love with a same-sex person aur ab aap apni family ko bataoge kaise. Agar aapne apni zindagi mein aisa confession nahi kiya hai and you want to come out of the closet on radio, to let me tell you ki time ho gaya hai for...
3: The Secret Box.
2: और अगर आपका कोई भी प्राइड रिलेटेड कन्फेशन है, देन आई हैव ऑल द नॉन जजमेंटल इयर्स टू हियर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप विद योर कन्फेशन एंड आई कॉल यू. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू नॉटी बॉय?
4: बढ़िया.
2: बढ़िया तो आप काफी हो. आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर भेजा था फेसबुक पर, आई वॉज लाइक दिस इज अ गाय आई वॉन्ट टू टॉक टू. सो अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. नाउ आई एम जस्ट हैंडिंग दिस ओवर टू यू. ठीक है,
4: मतलब मैं कैसे बताऊँ. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड मी लूजिंग माय वर्जिनिटी.
2: ओके.
4: आई डिड लूज इट टू माय कजन.
2: योर कजन? ओके, बट ये कहानी यही खत्म नहीं होती है क्योंकि Why don't you tell me more about it?
4: So my first sexual encounter was A with a male, B with my own cousin, or when we were making out for the first time.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeetuRaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: So I was watching this movie called No Strings Attached, okay? And ye dono bande date par jaate hain on Valentine's Day. And ek to I'm in love with Natalie Portman. But Natalie Portman apne bande ke liye ek handmade card banati hai. And when I saw that scene, I was like, this is so gooey and it is so cute. Even in 2020, there is nothing more romantic than a handmade card. अगर आपने 2020 में अपने पार्टनर के लिए एक हैंडमेड कार्ड नहीं बनाया या अपने हाथों से एक लव लेटर नहीं लिखी है, माई सजेशन इज़ यू टोटली हैव टू ट्राई इट. आई एम टेलिंग यू, जिस रेट पे मुझे गूज़बम्स हुए थे ना वो देख के. और किसी के लिए आप लव लेटर लिखो या ना लिखो, किसी के लिए कार्ड बनाओ या ना बनाओ, मेरे लिए ज़रूर बना दो एंड आई बी सो हैप्पी टू रिसीव इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है प्यार करना, स्पेशली आपसे. एंड आई बिलीव जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहाँ पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची
1: बाय उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर

0: में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार वी लव यू
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे. इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जींस पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जींस पर मैं हूं श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विथ इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
1: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनल

0: करते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Only on Mirchi, it's hot.

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1 2 3

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: बड़ी तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुनकर के वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर साथ जीतू राज। Only on मिर्ची, it's hot।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, Only on Mirchi, it's hot।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: किया।
2: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं? अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह

0: And the biggest hero of the film Drishyam is Ajay Devgan, Vijay Salgaonkar. क्या करता है फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ. अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ

0: फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.

चल चल चल चल चल चल झपठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिश्तों में प्रॉब्लम पर नहीं समझ पर फोकस करना क्यों जरूरी होता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छा। वीकेंड कैसा रहा आपका?
4: वीकेंड वॉज गुड, नॉट वेरी हेक्टिक।
3: सिस्टर, मुझे जैसा आप जानती हैं फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो मॉनसून वेडिंग मेरी बहुत प्रिय फिल्म है, और उसमें रजत कपूर जो हैं वो एक तेज अंकल का किरदार निभाते हैं जो बहुत ही शोषण करते हैं, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं एक्सेट्रा, और अंत में नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है वो उनसे भिड़ते हैं और सामना करते हैं, जिससे जो है ये होता है कि परिवार जो है वो टूट जाता है। और मेरे मन में ये सवाल है, कई बार इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम क्या है फैमिली को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसी पे पूरा फोकस होता है, तो गलत फहमी हो, दुर्व्यवहार हो, शोषण हो, कटुता हो, ये ऐसा क्यों है कि रिश्तों को हम किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहते हैं, फैमिली को एक साथ रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहते?
4: ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होती है, और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, वैलिडेट करे, रिस्पेक्ट करे। वो इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी जो गलत चीजें हम उसका भी सहन करते हैं।
3: जी,
4: सहन करना अच्छा है, टॉलरेंस अपने आप में एक पावर है, लेकिन कई चीजों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे फिजिकल अब्यूज है या डोमेस्टिक वायलेंस है, या आपको कोई अनएथिकल होने के लिए कहता है, वर्क प्लेस पर आपको कोई गलत करने के लिए कहता है, वहां पर हमें उस सिचुएशन का सामना करना होता है।
3: जी,
4: कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार किसी चीज का सामना करना होता है लेकिन हम सहन करते हैं, वो गलत है, और वो इसीलिए क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए, या हम चाहते हैं कि समाज में हमारी एक इज्जत बनी रहे, उसके लिए कभी कभी हम अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: क्या हम अनजाने में गलत चीजों को अपनी एनर्जी दे रहे हैं? आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: ये हमने हाईवे फिल्म में भी देखा था, जहाँ पे आलिया भट्ट को ना अपनी पुराने बचपन में हुए जो शोषण होते हैं उसके बारे में याद आती है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाती है। और मेरा सवाल यही था कि सामना करना एक बात है और सहन करना एक बात है, लेकिन ऐसा क्यों है कि परिवार को बिखरने से हमें ज्यादा डर लगता है, लेकिन हर सदस्य की जो भलाई है और सुरक्षा है उस पे फोकस नहीं होता? ये इस बात पे क्यों टिके रहते हैं?
5: कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ किसी मोमेंट पर, लेकिन हम बहुत बाद में उस चीज को कन्फ्रंट करते हैं। तब तक हम उसको अंदर ही अंदर, जैसे वो बीज है, अब वो है तो गलत बीज ना,
4: लेकिन उसको पानी देते रहते हैं
5: तो वो नफरत और रिवेंज के अंदर बदल जाते हैं। हमें किनारा करना होता है किसी एक व्यक्ति से, कई बार किनारा करना पड़ता है
4: जी बिल्कुल,
5: लेकिन अंदर जब रिवेंज बिटरनेस सब हो जाता है तो हमें लगता है सारा परिवार ही दोषी है, परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और कई बार ये सच भी होता है, जो हमने पहले भी कहा कि बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज क्या कहेगा। और फिर ये जो हम कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग
4: क्या कहेंगे लोग,
5: ये रोग है, डिजीज टू प्लीज। मना हम समाज में रहते हैं और समाज के जो नियम है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके, बच्चों की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके गलत को सहन करना क्योंकि समाज हमें एक्सेप्ट करे, वो चीज राइट नहीं है। तो आपके साथ कुछ होता है, आप कन्फ्रंट करें। होता क्या है, हम बोलते नहीं है लेकिन उसको अंदर ही अंदर सोचते जाते हैं। जितनी बार सोचते हैं, रीलिव करते हैं, उतनी बार उसका ब्लेम किसी दूसरे पर डालते हैं। पेरेंट्स ने मुझे बचाया नहीं, पेरेंट्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, उनको भी पता ही नहीं होता है।
4: सही बात।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: Am I comfortable? ये सवाल क्यों सेल्फ अवेयरनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, हैदराबाद में ना एक महिला बैंकर हैं, पहले एचआर प्रोफेशनल थी, तो वो किसी अखबार में शायद मैंने पढ़ा था इस बारे में, तो उनकी पिताजी की मौत हो गई थी, उसके बाद वो लिखती हैं कि मेरी एक और बहन है और हम दोनों को हमारी माँ ने अकेला ही पाल पोस के बड़ा किया, तो कृतज्ञ बहुत हैं, लेकिन अब कमाने वाली मैं ही हूँ। महिला बैंकर है, लिखती हैं कि माँ ने पाल पोस के तो बड़ा किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे एक लड़का पसंद आने लगा, लेकिन मम्मी को उससे थोड़ी सी वो होने लगी कि भाई अब तो एकमात्र जो साधन है कमाने का वो कहीं नहीं चला जाए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने उसकी छोटी बहन से उस लड़के की शादी कर दी। तो इससे ये जो महिला बैंकर, इनको बहुत गुस्सा आया और वो बिल्कुल उसने किनारा कर लिया, घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, शहर भी जो है वो शिफ्ट कर लिया, दूसरे शहर में जाके रहने लगी, और अब अपनी माँ को एक रकम भेज देती है घर खर्च के लिए, और अपने सारे रिश्ते जो उसने तोड़ लिए। इस केस में कौन सही है कौन गलत है उस पे हम नहीं जाना चाहते, उनको बहुत इस पे बैकलैश मिला, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर छोड़ के जाना और एक स्वतंत्र जीवन चुनना, उसे स्वार्थी क्यों माना जाता है?
5: देखो, ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें हम सही गलत नहीं कह सकते। अगर कोई इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, उसको कम्फर्टेबल है, और वो अगर उसकी चॉइस है, सो इट इज ओके, पर आप कहें कि सब उस चीज को एक्सेप्ट करें, बैकलैश का मतलब क्या है कि कई लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब भी हमारे समाज में कोई चीज पहली बार होती है, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होती, हमारे को वो चीज राइट नहीं लगती, तो बैकलैश तो आजकल सोसाइटी में, पहले तो कम्युनिटी से होता था, आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कंट्री से उस कंट्री से अनोनिमसली सब करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हैं, आर यू कम्फर्टेबल, आपको ठीक लगता है? When you do right, there is always peace after that. ये तरीका मेरा है find out करने का। कई बार हम कुछ कर लेते हैं पर अंदर से comfortable नहीं
4: होते, हाँ।
5: दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, bitterness है, नफरत है, कोस रहे हैं, complain कर रहे हैं, तो फिर आप ही comfortable नहीं है उस चीज से। उस समय पर सोचना है कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है या कुछ और करना है, अपने decisions उस पर बेस नहीं करने के बाकी सब क्या सोच रहे हैं, पर क्या वो मुझे कंफर्टेबल है, एम आई फीलिंग पीसफुल, एम आई कंफर्टेबल, वो देखना ज्यादा जरूरी है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुद को हर बार प्रूफ करना क्यों जरूरी नहीं होता और साइलेंस का पावर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस केस में तो महिला ने लिख के भी भेजा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इस वजह से मैं अलग हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी दोषी है, या माँ जो है एक तरह से शायद उनके साथ गलत हुआ इसलिए उन्होंने ये करने की कोशिश की। तो हमें एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ता है कि हमने ये काम किया, हम अलग हुए अपने परिवार से और हम इन पीड़ाओं से गुजर रहे थे।
4: हम एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो हमें एक्सेप्ट करे। एक्सप्लेनेशन देने में भी कोई हर्जा नहीं है, हर्जा
3: लेकिन जीना
4: होता है।
3: मुश्किल कर देते हैं ना कहीं रोज बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा हो, तुमने छोड़ दिया अपने परिवार को, तुमको अपनी माँ की चिंता नहीं है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो आदमी लगता है यार मुझे थोड़ा यहाँ पे शांति भी चाहिए।
4: सी देखो, एक्सप्लेनेशन देने में कोई हर्जा नहीं है, पर सिद्ध नहीं करना चाहिए। सिद्ध और जिद करने में ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। जब हम बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं ना, वी कीप ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्फ, वी डोंट नीड टू रियली प्रूव आवरसेल्फ। देखिए, कुछ भी आप समाज में जब कुछ नया होता है ना हट करके, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन जब वही व्यक्ति थोड़े समय के बाद सफल हो जाता है, जिसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, वो सफल हो जाता है, फिर वही लोग जो रिजेक्ट करते थे, वही लोग जो इंसल्ट करते थे, वही लोग जो कुछ कुछ कहते थे, वही आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, वही आपको अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस हर समय उस बेस पर नहीं ले सकते कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो राइट है कि नहीं। अगेन, दो चीजें हैं, एक है आप वो कर रहे हैं जिसमें सबकी एक्सेप्टेंस है, पर हो सकता है वो राइट ही नहीं है। हम आज अल्कोहल लेते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, वाह-वाह करते हैं, इट इज अ वेरी, बट वो चीज ही राइट नहीं है। वो चीज ही राइट नहीं है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। और एक है कि अकेला खड़ा होना पड़ता है, मैं अकेला, हाँ सबके खिलाफ, बट मुझे पता है कि मेरा कर्म सही है, एंड इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन इट्स ओके।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या कभी कभी फैमिली से डिस्टेंस बनाना गलत होता है या ये भी हीलिंग का एक हिस्सा हो सकता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे आपसे यही बात पूछनी थी कि इज इट अ सिन टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, अगर मैं अलग हो रहा, क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत लगती है। अपने परिवार का जो पूरा सेटअप है, कम्फर्ट है, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारा हमको वहाँ पे शेल्टर करते हैं, वो पूरा सेटअप छोड़ के अलग रहना, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार हमें स्वार्थी, गुनहगार भी ठहरा दिया जाता है कि तुमने अपने परिवार को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, प्रेशर बहुत रहता है। तो एक तरह आप कह रही हैं कि देखो, परिवार के लिए समाज क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सही लग रहा है या नहीं वो हमें सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है ना कि शायद हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हमें बाहर निकलना जरूरी है, तो उसमें एक गिल्ट फीलिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम उनको छोड़ के आए, तो क्या इतना गलत है ये?
4: इंटेंट देखना पड़ता है। आज एक आर्मी वाला है, वो भी तो छोड़कर जाता है अपने पेरेंट्स को,
3: उसकी स्थिति अलग है।
4: वही तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज देखनी पड़ती है ना, कि उस समय पर जब हम उनको छोड़ रहे हैं तो हम किस लिए छोड़ रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। एक आंसर हर जगह फिट इन नहीं होगा। एक है कि परिवार है तो परिवार में रोल तो होता है, आज बुजुर्ग माता पिता हैं तो आपका फर्ज भी होता है उनका ध्यान रखना। पर कभी कभी सिनारियो अलग होते हैं, जैसे अब ये मिलिट्री का सिनारियो है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब के कारण आपको कहीं जाना पड़ता है, आप एक्टर हैं, आपको उतने दिन जाना पड़ता है, तो आप फिर ये सोचते हैं, उसमें गिल्ट में जाने की जगह ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हर बार वो पॉसिबल भी नहीं होता सिनारियो, हम चाहें उनके साथ रह लें। आज आप देखें, कई बार हम देखते हैं कि वही पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे बहुत मेहनत करके, क्योंकि पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उनको जो नौकरी मिलती है वो मिलती है उनको मेट्रो सिटीज में है या विदेश में मिलती है। अब पेरेंट्स ने तो पढ़ाया था ना, उन्होंने भी मेहनत करके पढ़ा, अब उनको अगर एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्यों नहीं लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को। तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जहाँ इंटेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे का भाव नहीं है पेरेंट्स को छोड़ना, दोनों में फर्क है। एक है आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट वॉन्ट टू टेक केयर, अब मैं, मुझे आपकी कोई फिक्र भी नहीं है और मैं आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहता। और एक है कि ये सर्कमस्टेंस है, इस समय पर ये सिनारियो है, इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या उनको अपने पास बुला सकते हैं, कोई केयर टेकर रख सकते हैं। उसमें हमारे मन में उनके प्रति कुछ नहीं होता, केवल एक्सटर्नल चैलेंज होता है। और कई बार तो हम घर में ही इकट्ठे होते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां हैं। मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां नहीं है ना, तो कई बार दूर रह करके भी आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं।
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लाइफ में प्रायोरिटीज क्लियर होना क्यों कंफ्यूजन को कम करता है और क्लैरिटी लाता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है कि मैं कलकत्ते में था, मेरे माता पिता कलकत्ते में रहते थे और मुझे कलकत्ता छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन किसी कारणवश मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ, मैं दिल्ली गया और फिर एक समय पर मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं, तो मैंने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए मैं वापस कलकत्ते जा रहा हूँ, और मेरे CEO ने कहा ठीक है भाई तुम आ जाओ, लेकिन उसके 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने कहा कि अब तुमको बम्बई आना पड़ेगा, और मैं बहुत दिनों तक उसको टालता रहा लेकिन आना पड़ा। मैंने अपनी माँ से भी बात की तो माँ ने कहा कि तो चले जाओ, और मेरे बहुत अच्छे बॉस थे, उन्होंने कहा देखो अभी तो माँ की हालत ठीक है, तुम आ जाओ। मैं बम्बई आ गया और आने के 2 साल बाद ही मेरी माँ का निधन हो गया। अब वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं अगर कलकत्ते में रहता, उनके पास रहता, उनके आखिरी दिनों में सेवा कर पाता, और ये कई लोगों के साथ होता है, कई परिवारों के साथ होता है, गिल्ट ज्यादा नहीं कि मैं छोड़ के निकल आया, उनके भाव में उनकी तरफ से शायद ऐसा ना रहा होगा, उन्होंने अपने बड़े प्यार से भेजा, मैं जाता था भी रहता था, लेकिन उनके आखिरी दिनों में उनके साथ नहीं रह पाना, ये गिल्ट हमेशा रहता है। तो आपको एक जिंदगी चुननी भी है, आपको अपना परिवार का ख्याल भी रखना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, और कहीं ना कहीं ये गिल्ट ना हो कि आप परिवार वालों के साथ तब ना रहे जब वो उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसका संतुलन कैसे बनाए?
4: देखिए, किसी ने शरीर छोड़ना वो तो निश्चित होता है ना, डेथ और बर्थ, तो आप इधर थे और उसके पीछे से उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी ये बात कि हम उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हर एक की पर्सनल चॉइस है, उसमें राइट रॉन्ग नहीं है। आप आ गए तो भी कुछ गलत नहीं है, पर अगर आप नहीं आते और थोड़ा समय और उनके साथ स्पेंड करते तो भी गलत नहीं था। प्रायोरिटी, कईयों के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि उनकी जिम्मेवारी है और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, बच्चे हैं, परिवार को चलाना है, उतना धन कमाना है, उसके लिए ऑप्शन नहीं था, आना ही था। किसी के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि नहीं, मैंने भले अभी इस समय मुझे धन नहीं है मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे तो इनके साथ ही समय बिताना है, नहीं तो मुझे रिग्रेट रहेगा लाइफ में, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे अपना ये समय उनके साथ ही बिताना है, इवन इफ आई अर्न लिटिल लेस इन दीज फ्यू ईयर्स इट इज ओके, मनी इज नॉट राइट नाउ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्या मेरी प्रायोरिटी है उस समय पर, उस सीन में, उस सिनारियों में क्या मेरी जिम्मेवारी है, उसको देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस समय हम डिसीजन ले रहे हैं वो मेरी चॉइस है, उसमें ये फायदा था इसलिए मैंने ये चूज किया, और फिर ऐसे अपने से बात करके अपने को हल्का करना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोला।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम खुद को बेटर समझने लगते हैं तो इसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ता है। ये शिफ्ट कैसे आता है, आइए मिलकर जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर कहते हैं कि हाइंडसाइट में सब सही लगता है, तो उस समय मैंने डिसीजन लिया और उस समय मुझे सही लगा हमने किया, लेकिन कई बार आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि काश मैंने ये डिसीजन उस समय नहीं लिया होता या ये डिसीजन ले लिया होता, तब दिक्कत होती है। दिक्कत वरना नहीं होती, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
4: हमें से कोई भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, और हमें से कोई भी नहीं है जिसने सारे डिसीजन राइट लिए। We're all work in progress. उस समय जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो हमें बिल्कुल राइट लग रहा होता है। हमारी जितनी इंटेलेक्चुअल इमोशनल कैपेसिटी है, हम वो डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि हमें गलत लग रहा है और हम ले रहे हैं। हमें वो सच में जेन्युइनली राइट लग रहा होता है। बाद में अगर हमें लगता है कि वो राइट नहीं है, मे बी नाउ शायद आपके मदर के साथ ऐसा हुआ, आपके फादर के साथ आप डिफरेंटली कोई डिसीजन चूज करते हैं, इट इज ओके। व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर, लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट अ क्राइम ना। हम उस चीज में, और कई बार ऐसा होगा कोई ब्लेम नहीं कर रहा है,
3: लेकिन मन में वो बात चल रही है,
4: वो हम कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे मन में या दिल थी कि आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद माय फैमिली। अगर आपको ऐसा लगता है और आपने रियलाइज किया कि इस चीज का एक रिग्रेट आपके मन में रह जाता है, सो मे बी विद द अदर पेरेंट वो चीज आप रिपीट नहीं करें। विद द अदर पेरेंट आपके पास फिर चॉइस है कि आप कितना समय उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये रिग्रेट कईयों के मन में रह जाती है, लेकिन अगेन आई विल से कि हर एक के पास वो ऑप्शन नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं, रोज फोन पर बात कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप कभी भी हमें फोन करें, आपको लगता है कि उनको हमारी जरूरत है, तो काम छोड़ करके भी जा करके उनको प्रायोरिटी बना सकते हैं। व्हाट इज पॉसिबल, समटाइम्स जो पॉसिबल है वो भी नहीं करते, उसका गिल्ट ज्यादा होता है। वो फोन उठा सकते थे पर नहीं उठाया, दो दिन की छुट्टी ले सकते थे पर नहीं ली, थोड़ा सा आधा घंटा ज्यादा बात कर सकते थे। समटाइम्स पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं, रिपीटेड भी वही बात करते हैं, उनका फोन देखकर ही आपको पता होता है वो क्या बात करने वाले हैं। आप एक बात उनको कई बार समझाते हैं, वो बच्चे जैसा हो जाते हैं। हम बच्चे थे तो हम भी तो एक ही बात बार बार करते थे, तो वो कितने प्यार से एक ही बात सुनते थे और एक ही बात हमको समझाते थे। आज वो बच्चे बन गए, अगर एक ही बात वो 50 बार भी करते हैं और अगर हम सुन लेते हैं और एक्नॉलेज कर लेते हैं, एंड दे फील दैट कोई मुझे सुनता है, कोई है मेरा अपना, तो ये भी तो सेवा है ना। फिजिकली हाजिर होना सेवा नहीं है, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट होना भी अपने आप में सेवा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर मुक्ति है, वो लिखती है कि भक्ति योग की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, रोज जप करने का सोचती हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। जब सब कुछ समझ में आता है तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाती? और क्या अभी भी जागरूकता मेरे अंदर कम है? अंदर ऐसा क्या है जो जाग नहीं पा रहा?
3: लगन की कमी है
2: जी।
3: जब किसी चीज के प्रति आपको बहुत लगन होती है तो आप वेट करते हैं वो करने के लिए, तो केवल समझ काफी नहीं होती कई बार। वो जब किसी चीज की लगन लग जाती है ना, तो फिर आपको दिल होती है करने की, मजबूरी से नहीं आप करते, आप उस चीज को दिल से करते हैं। और इसीलिए जब वो लगन लगने के लिए थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो इनिशियली अगर हम कुछ भी करते हैं, सो सेट अ वेरी स्मॉल गोल फॉर योरसेल्फ, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देगा। मे बी आप 1 वीक का गोल सेट करें कि मुझे 1 वीक में एवरी डे 1 आवर के लिए करना है, और करना ही है। उसमें आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बहुत लॉन्ग टर्म गोल बना लेंगे तो कई बार मुश्किल लगता है। जस्ट डू इट फॉर 1 वीक और उसमें कैसे भी मुझे करना ही है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा।
2: राइट, और उससे आदत बनेगी, और जरूरी नहीं कि एक हफ्ते
3: उससे आपको दिल होगी। आदत तो अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है आपको मोटिवेट करेगा।
2: फिर एक हफ्ता
3: जैसे हम एक्सरसाइज के लिए सोचते हैं करेंगे, हम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, हम करेंगे करेंगे, होता नहीं है। फिर देन समटाइम्स वी थिंक कि नहीं, 1 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं, सिर्फ 1 मंथ करके देखते हैं, रिजल्ट आता है, यू फील फ्लेक्सिबल, यू फील लाइट, यू फील कम्फर्टेबल, देन यू वॉन्ट टू कंटिन्यू।
2: राइट,
3: तो जब तक आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लगन बैठती नहीं है।
2: जो छोटे छोटे स्टेप्स में करिए, हफ्ते भर में, एक घंटा नहीं तो 20 मिनट तो बैठिए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो करोगे।
3: देखो ये हर चीज में होता है, मुझे कई लोग मिलते हैं कहते हैं हम सुबह उठना चाहते हैं, हम उठते भी हैं पर हमारे से होता नहीं है। आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करते हैं, जो आप पहले नहीं करते थे, वो डिफिकल्टी होती है, वो एकदम नहीं होगी। गिव अप नहीं करना होता, इफ यू नो दिस इज राइट, आपको पता है ये सही है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये प्राप्ति है, वो टेस्टेड है, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे, पहले डिफिकल्ट लगेगा, फिर इजी हो जाएगा, फिर वो नेचुरल नेचर बन जाएगा।
2: बहुत अच्छी बात है। मुक्ति जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, और खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। तो बस याद रखिए और आगे बढ़िए
3: जी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे देसी लोग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और आज का रिमाइंडर है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना फ्री डिलीवरी पर आती हैं, तो एटलीस्ट सुबह सुबह का एंटरटेनमेंट जो है वो ऑसम होना चाहिए। सो वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क, पैकिंग योर टिफिन, ड्रॉपिंग योर किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर सिटिंग इन अ मीटिंग थिंकिंग यार ये मीटिंग ईमेल भी तो हो सकती थी। आई हैव गॉट यू, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। आज का प्लान काफी सिंपल है, थोड़े से बॉलीवुड बैंगर्स सुनने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं, यहाँ वहाँ की अपडेट्स मैं तुम्हें देने वाली हूँ, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें तुम्हें देने वाली हूँ, थोड़ा सा न्यूज, थोड़ी सी गॉसिप, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, और वो देसी मिर्च मसाला जो घर से 8000 माइल्स दूर रहकर भी तुम्हें घर के जैसा फील कराता है। एंड हे, डोंट जस्ट लिसन टू मी, टॉक टू मी एज वेल। व्हाट्सएप कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर, या फिर तो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी डीएम कर सकते हो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट भी है, थोड़ी सी देर में उसके बारे में बताती हूँ। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग, सुनते रहो मुझे, एंड ऑफकोर्स कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: G Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मर्ची मॉर्निंग्स। और पता करते हैं आज के दिन यानी कि 7th of October को क्या हुआ था। 1571 में बैटल ऑफ लिपांटो यानी कि एक कैथलिक अलायंस डिफीटेड द ऑटोमन फ्लीट। बेसिकली मेडिटेरेनियन में फुल ऑन नेवल शोडाउन हुआ था। 1765 में न्यूयॉर्क में स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हुआ, जहां पर 9 अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटिश टैक्सेशन के अगेंस्ट एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट प्लान किया। 1913 में फोर्ड ने मूविंग असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस की, कार्स बनाना सडनली फास्टर एंड मोर एफिशिएंट हो गया। हेनरी फोर्ड जो है उन्होंने बेसिकली कहा कि लेट्स स्टॉप मेकिंग कार्स वन बाय वन गाइस। 1949 में ईस्ट जर्मनी ऑफिशियली फॉर्म्ड अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस। 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने मून के फार साइड की फर्स्ट एवर फोटोग्राफ्स भेजी। एंड देन 2001 में द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इन अफगानिस्तान। फिर आया 2023, हमास लेड मिलिटेंट्स लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक ऑन सदर्न इजराइल, किलिंग अराउंड 1200 पीपल एंड टेकिंग मोर देन 250 हॉस्टेजेस, ट्रिगरिंग द डेविस्टेटिंग इजराइल हमास वॉर इन रीसेंट टाइम्स। ये डीपली ट्रेजिक चैप्टर था with consequences that continue to be felt till date. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ गॉड, वन मोर इन।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi gang. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. And now let's check on Mirchi Mornings की आज वेदर का क्या हाल चाल है. Because before you step out wardrobe का sweater या t-shirt ये decide करना तो बनता है. Right now we are sitting at around 43 degrees Fahrenheit. It's feeling closer to 44 degrees Fahrenheit and it's mostly sunny. Daytime में sunshine जो है it stays on with temperatures climbing up to around 68 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. So हाँ, एक jacket लेकर जाना बनता है साथ में. लेकिन please वो कनाडा के लेवल का विंटर जैकेट नहीं लेकर जाना है. नो पार्का स्टाइल जैकेट, सिर्फ एक हल्का पुल्का सा जैकेट साथ में लेकर जाना. विंड जो है वो प्रिटी चिल है, साउथ वेस्ट से आ रहे हैं अराउंड 5 to 10 माइल्स पर आवर. एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट जीरो चांस ऑफ रेन टुडे ऑल्सो, सो योर अम्ब्रेला कैन एंजॉय वेल डिजर्व डे ऑफ टुडे एज वेल. टुनाइट स्काइज स्टे मोस्टली क्लियर एंड टेम्परेचर्स डिप टू अराउंड 51 टू 53 डिग्रीज फारेनहाइट विद लाइट सदर्न वेस्टर्ली विंड्स. सनराइज वॉज अराउंड 7 AM and sunset is around 6:29 PM. So you've got plenty of daylight to enjoy that gorgeous fall vibe. Basically, aaj ka tapman is giving very good hair day, very good weather day. Bas traffic ka koi bharosa nahi hai. Usko tumhe khud handle karna padega. Aur agar bahar jaoge to layer ke player bankar bahar jana, apna SPF 50++++ saath mein laga kar jana aur mirchidar vibes bana kar rakho. And of course, not to forget, keep yourself hydrated and drink plenty of water. Main ho Priscilla tumhare saath mein. Mirchi Mornings is the name of the show. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. Or WhatsApp करने के लिए 9033 Mirchi. That's my number 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to the second hour of Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla and now we are heading into
2: Mirchi Hour Gun 3.
1: सबसे पहले काफी डिस्टर्बिंग न्यूज. सदर्न कैलिफोर्निया में एक कपल गाओजून श्वेन और सिल्विया जैंग को चाइल्ड अब्यूज चार्जेस में अरेस्ट किया गया है. अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग मैंशन में एट लीस्ट 21 चिल्ड्रन एज्ड जस्ट 2 months टू 13 ईयर्स वर बीइंग केप्ट इन व्हाट प्रोसिक्यूटर्स डिस्क्राइब्ड एज हॉरिफिक कंडीशंस. मेनी ऑफ द चिल्ड्रन वर रिपोर्टेडली बॉर्न थ्रू सरोगेसी. इन्वेस्टिगेटर्स अलेज्ड द चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू डेली फिजिकल अब्यूज बाय नैनीज. इट्स अ डीपली ट्रबलिंग केस एंड द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू. नंबर 2 पर राजपाल यादव केस में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान एक्टर राजपाल यादव जोक्ड अबाउट मेकिंग अ फिल्म बेस्ड ऑन हिज लॉन्ग रनिंग चेक बाउंस केस. द प्रपोज टाइटल 16 सावन जेल के. बाय 16 द डिस्प्यूट हैज रिपोर्टेडली स्ट्रेच्ड अक्रॉस 16 इयर्स. एंड लास्टली क्रिकेट से टीम इंडिया की जर्सीज के पीछे वो मिस्टीरियस बल्ज क्या है. दैट्स नॉट अ सीक्रेट स्नैक कंपार्टमेंट. इट्स अ जीपीएस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डिवाइस टक्ड इनटू अ पाउच इन द कंप्रेशन वेस्ट. इट ट्रैक्स थिंग्स लाइक distance, speed, acceleration, deceleration and overall workload, helping the support staff monitor fitness and manage injury risk. And that's it for your Mirchi Hour Ka 3. Follow karo mujhe Mirchi Press. Is my handle name on Instagram and X and WhatsApp number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid vala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना इसे, ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में ठीक है।
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर स्क्रोलिंग से दिल भर गया है तो अब लक की थोड़ी सी बात कर ले भाई। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, और 9 रातों में मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स जीत सकते हैं 9 गोर्जियस गोल्ड चेन्स कर्टसी वीरानी ज्वेलर्स। यप, इट्स मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। हर नवरात्रि की रात को लकी विनर्स जीत सकते हैं प्रेशियस गोल्ड चेन्स, मतलब की माता रानी की ब्लेसिंग्स तो रहेंगी, साथ साथ में थोड़ा सा गोल्डन ब्लिंक ब्लिंक भी तुम्हें मिल सकता है। पार्टिसिपेट करना सुपर सिंपल है। व्हाट्सएप कर सकते हो नवरात्रि लिखकर, अपना पूरा नाम लिखकर भेजो 9033647244 पर, दैट्स 9033 मिर्ची, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। लिखो नवरात्रि, अपना पूरा नाम और फोन नंबर लिखकर मुझे भेज दो अभी की अभी। और फिर वेट करना है मेरे कॉल का, कॉल करके मैं तुम्हारे साथ खेलने वाली हूँ एक कॉन्टेस्ट, तो उसके लिए रहो अभी के लिए, फटाफट से अपनी एंट्रीज रजिस्टर कर लो। एंड व्हाइल यू आर इन द फेस्टिव मोड, वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक्ट्री रोड हैज स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट करो इन पर्सन या फिर ऑनलाइन वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर चेकआउट करो। और अभी मिर्चीदार बैंगल्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज।

0: वही तो सारा मेरा उप्स।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। आज का बर्थडे क्लब जो है काफी ब्लिंग ब्लिंग है। देसी स्क्वाड से वी गॉट एक्टर शरद खेलकर, क्रिकेटर जहीर खान, सिंगर अभिजीत सावंत एंड एक्ट्रेस रेणुका शहाने, ये सब तुम्हारे साथ अपना बर्थडे शेयर करे। और इंटरनेशनल गैंग में वी गॉट टोनी ब्रैक्सटन, साइमन काउल, योयो मा, टॉम यॉर्क एंड यस लुइस कैपाल्डी। बेसिकली अगर आज तुमको बर्थडे केक मिल रहा है तो कंपनी काफी म्यूजिकल है तुम्हारे साथ। और एक इंटरेस्टिंग वन, वी गॉट शॉन एंड एरन एशमोर, दिस कैनेडियन एक्टिंग ट्विन्स वर बोर्न ऑन दिस वेरी सेम डे। तो बर्थडे बेबीज, टुडे इज योर डे, केक खाओ, विशेस कलेक्ट करो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होने का लाइसेंस आज तुम्हें मिला हुआ है। अपने बर्थडे शाउट आउट्स तुम मुझे भेज सकते हो डायरेक्टली मैसेज करके। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट.
2: Rajwells.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,215. $4,215 पर ट्रे के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और आने वाली पुष्य नक्षत्र धनतेरस दिवाली के समय गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएं, उससे पहले आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajwells.com के साथ. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ राज ज्वेल्स की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आज ज्वेलरी अप्रूव होने पे गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी हिडन फी के. ज्वेलरी आपके साथ, गोल्ड का प्राइस लॉक्ड, 9 इंस्टॉलमेंट्स में सेम प्राइस पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाएगी और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलेंगे बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajwells.com के साथ. थैंक यू.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट. सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. मेरे साथ रहो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी हैं, मुझे टाइम कम है सर. ये दो हैं, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल है, एक हरा है, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता
2: एक लाल, एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास कोई भी नहीं है.
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: फटना नहीं चाहिए. आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे.
2: ठीक है
1: बताइए. हरा काट के देख.
2: धीरे से. 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
1: तो मैं इसी को पूछा फिर तूने.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: प्रिसिला के साथ सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट, जहां पर पहली छह राशियों के बारे में हम बात करने वाले हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, एनर्जी फुल चार्ज पर है आज, क्रिएटिव आइडियाज का फ्लड आ सकता है, सो पिच दैट ओरिजिनल आइडिया, लीडरशिप नोटिस करेगी, लेकिन ईगो को भी थोड़ा सा पार्किंग में रखो यार। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज फोकस घर, फैमिली और फाइनेंसिस पर है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बात करो अजम्पशंस का, नेटफ्लिक्स सीजन मत बनाओ। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, नेटवर्किंग गेम काफी स्ट्रांग है, क्विक थिंकिंग और कम्युनिकेशन से वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों में प्रोग्रेस होने वाला है। बेसिकली योर माउथ एंड ब्रेन आर फाइनली वर्किंग ओवर टाइम, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। लकी कलर इज कोबाल्ट ब्लू, लकी नंबर इज 23। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल खोलना रिलेशनशिप्स को डीपर बना सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी आए तो ओवरथिंक नहीं बल्कि क्लियर कॉन्वर्सेशन करो। माइंड रीडिंग का कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, आज लीडरशिप एनर्जी फुल वॉल्यूम पर है, सोशल प्लान्स बनाओ, कॉन्फिडेंस को करियर में चैनल करो, बस स्वागत इतना हो कि एलिवेटर भी तुम्हारे स्वागत में खुल जाए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रहना आज के दिन। लकी कलर इज सनफ्लावर, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, लेस नॉइज मोर फोकस, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, क्वाइटली गेट द वर्क डन एंड यू विल बिल्ड समथिंग सॉलिड फॉर द लॉन्ग रन। आज केओस को स्प्रेडशीट से हरा सकते हो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 32। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। ये इंस्टाग्राम और एक्स पर है, और व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. आज तुम्हारे प्लैनेट्स कितने चैटी हैं? Let's find out.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: Libra यानी कि तुला राशि. Charm is your सुपर पावर today. New connections बनेंगे, relationships जो है काफी स्मूथली navigate होंगे और बैलेंस भी मिलेगा. मतलब कि स्केल्स जो है फाइनली weighing something other than, should I text them? Lucky color is peach, lucky number is 18. Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि. Career visibility strong है, people are noticing you, so own that spotlight. लेकिन emotions जो है वो intense हो सकते हैं. Honesty रखो और boundaries clear रखो. हर feeling को TED talk बनाना जरूरी नहीं होता है. Lucky color is burgundy. Lucky number is 27. Sagittarius yani dhanu rashi. Optimism is doing the heavy lifting today. Health, learning, travel or international opportunities. Kuch fresh doors open ho sakte hain. Basically passport ko emotional support dene ka time aa chuka hai. Lucky color is turquoise. Lucky number is 19. Capricorn yani makar rashi. Money matters. Slow and strategic. Shared finances ya big decisions mein planning first, impulse later. Bank account ko bhi thoda sa respect chahiye boss. Lucky color is charcoal gray. Lucky number is 40. Aquarius यानी कुंभ राशि. आज listening is your secret weapon. Relationships में भी और those important work negotiations में भी. पहले सुनो, सोचो, फिर बोलो. Not every conversation needs a rebuttal. Lucky color is electric blue. Lucky number is 7. Pisces यानी कि मीन राशि. Creativity is flowing beautifully into your work. Quiet dedication brings satisfying results. So let your talent do the talking. Sometimes low key is high key powerful. Lucky color is sea foam. Lucky number is 21. And that was your Rashi Zone. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझे सुनते रहो, जाकर मुझसे कनेक्ट भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गाना बजा दूं।
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
2: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज as a film review person कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब it was a powerful film, but दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: मिर्ची फ्रेश माल.
4: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया.

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: एंड जस्ट लाइक दैट मेरी मॉर्निंग की कॉफी खत्म हो चुकी है। होपफुली तुम्हारा कम्यूट भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन अगर कहीं भी नहीं जा रहे हो तो वेट, योर डे डजंट हैव टू लूज ऑल द फन। दैट्स राइट देसी फैम, मिर्ची मॉर्निंग्स के रैप अप का टाइम तो आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी थ्रू आउट द ट्रैफिक, चाय ब्रेक, स्कूल ड्रॉप ऑफ, वर्क कॉल्स। और उन लोगों को भी स्पेशल थैंक यू जो सुबह सुबह 3 मीटिंग्स ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुके फिर भी मेरे साथ बने हुए थे। एंड बिफोर आई लेट यू गो, नवरात्रि इज राइट अराउंड द कॉर्नर और उसमें लक को थोड़ा सा माने का टाइम आ चुका है। वही द कॉन्टेस्ट मिर्ची के साथ 9 लकी विनर्स को मिल सकती है 9 गोल्ड चेन्स। दैट्स राइट, तुमने बिल्कुल सही सुना, मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स। स्टार्ट हो चुका है 9 नवरात्रि की नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एवरी डे टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन्स। पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा इजी है, व्हाट्सएप खोलो अभी के अभी, टाइप करो नवरात्रि और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। या फिर तुम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, दैट्स क्विकर। राइट नवरात्रि, देन योर फुल नेम एंड फोन नंबर एंड देन सेंड इट टू मिर्ची प्रिस, दैट्स माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड देन गेट रेडी फॉर माई कॉल जहां पर मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्टेस्ट खेलने वाली हूँ। एंड इफ यूर अराउंड ओक ट्री रोड, वीरानी झूला को विजिट करना बनता है, क्यों? क्योंकि वहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। या फिर तुम ऑनलाइन विजिट कर सकते हो viranijewelers.com पर। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर मेकिंग माय मॉर्निंग्स लॉट मोर मिर्चीदार। अभी के लिए टाटा बाय बाय, यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीन्स पे हेलो हेलो श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी, फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जाकर के अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
1: मेरा पेशाब लूट रहे हो आप, क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा
1: कहीं और दे देता फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है करके
2: जा, मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुँचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी। वेल, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजंती माला जी को सुनाया, तो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला

0: हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई यू नो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म विच वॉज इन कलर अंडर नवकेतन प्रोडक्शंस गाइड इसको बना रहे थे एंड साइमल्टेनियसली राज कपूर साहब आरके फिल्म बैनर के अंडर संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।
1: मेहरबान लिखूं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिस पे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिली नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो यू नो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेट कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
3: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
4: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल।
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
3: हेलो।
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
3: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
4: वही लेवल 7।
3: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
4: अग्रेशन।
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
3: अरे तू है कौन, तू ये बता।
4: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
3: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
3: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
4: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप हूं श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म्स की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वांटेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वांटेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शोमैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आर के फिल्म। तो क्या हुआ,

महेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म्स वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आखिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

इस खत को गाने में बदला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम। सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे। शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी। सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन ख़त निकाला और वो अल्फाजों के धनी तो थे ही। उन्होंने उस ख़त पे लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने ख़त पढ़ा, फटाक से हसरत साहब को गले लगा लिया। वेल, इसी खत को फिर गाने में तब्दील किया गया, संगम का द फेमस सॉन्ग ये मेरा प्रेम पत्र बाय रफ़ी साहब। ये गाना मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक और रफ़ी साहब का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

राज कपूर साहब इसी फिल्म से एडिटर भी बने थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, मूवी का नाम है संगम, जो आर के फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को एडिट भी करने वाले थे राज कपूर साहब, एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों को एडिट किया, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या फिर बॉबी हो। तो इसी फिल्म संगम का बड़ा खूबसूरत गाना है आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा। अप नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप, क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा
1: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर देगा।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेन करनी है करके
2: जा, मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का नाम संगम रख दिया गया था। अंधेरी ईस्ट में है आज भी ये फेमस सिनेमा हॉल जिसका नाम है संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इस हॉल के जो ओनर्स थे ना, देवर टंडन फैमिलीज एंड देवर ह्यूज फैन ऑफ राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्मों को लॉन्च करते थे तो बस इसी हॉल में ना प्रीमियर्स भी होते थे, तो राज साहब खुद भी जाया करते थे। ये पूरी फैमिली राज साहब की द शोमैन की इतनी बड़ी फैन थी कि आफ्टर द फिल्म संगम दे एक्चुअली नेम्ड देयर हॉल एज संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इसी फिल्म की नॉनस्टॉप बातें चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। और हाँ, अगर श्रेया से वन टू वन बात करनी है, इस आवाज के पीछे भी जो चेहरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सारी कास्ट एंड क्रू ओवर एक्साइटेड थी कि उनको इंडिया के बाहर वो भी यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और इंडियन ऑडियंस इसलिए एक्साइटेड थी कि उनको बड़े पर्दे पर यूरोप दिखेगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन यूरोप, और इसके लिए ना राज कपूर साहब भाई वैजंती माला को एंड राजेंद्र कुमार को खुद को और भी कास्ट एंड क्रू के करीब 10-15 लोगों को बाहर यूरोप लेकर के गए थे। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो बाहर जाकर के शूट हुई थी और वो भी यूरोप में शूट हुई थी। सो इंडियन ऑडियंस में ना ऑलरेडी बाय वर्ड ऑफ माउथ ये स्प्रेड हो चुका था कि इसमें तो फॉरेन भी है। तो कहते हैं कि संगम को देखने ना लोग फैमिली भर भर के आई थी और बार बार आ रही थी। इतना मेजर क्रेज हुआ कि अंधेरी का एक सिनेमा हॉल था और उसकी जो टंडन फैमिली एज इन द ओनर्स वर द टंडन फैमिली, उन्होंने अपने हॉल का नाम रख दिया था संगम हॉल, जो आज भी संगम हॉल के नाम से फेमस है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: चले।
1: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी गाड़ी में बैठोगे एंड वी विल हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे आप फिजिकली हो ना हो, मेंटली उनके साथ होते हो। और जिस भी सिचुएशन में वो बंदा होता है ना, उनको एनकरेज करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई साया है तो उसे ना हमेशा पकड़ के जकड़ के रखो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना एंड गुड नाइट।

0: कभी कभी तो किसी फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है उस फिल्म के सेट की कहानी।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जो मैं ढूंढ कर आप तक लाती हूँ जानी। वैसे आज बात कर रही हूँ विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट फाइटर के बारे में, जिसके साथ ही वो अपना हॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। सो बेसिकली एक प्रेस कॉन में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर किया एंड इट स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन कि भाई बॉलीवुड और हॉलीवुड का वर्क कल्चर कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। सो इस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म स्ट्रीट फाइटर में विद्युत का रोल आइकॉनिक कैरेक्टर धालसिम का है, जो एक योग मास्टर और मार्शल आर्ट्स फाइटर है। लेकिन स्ट्रीट फाइटर के सेट पर जो चीज उन्होंने सबसे ज्यादा नोटिस की वो एक्शन या बजट नहीं, डिसिप्लिन थी। उन्होंने बताया कि भाई सेट पर अराउंड 300 लोग काम कर रहे थे और सब एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे। अगर कॉल टाइम 10 बजे का है तो एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेट्स एट 10, चाहे वो एक्टर 50 सेंट हो, जेसन हो या कोडी रोड्स हो, लेट होने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इनफैक्ट अगर कोई एक मिनट भी लेट हो जाए तो प्रोडक्शन का कॉल सबसे पहले जाता है और पूछा जाता है कि भाई आर यू ओके, आप हॉस्पिटल में तो नहीं है। अब यहाँ कंपैरिजन सिर्फ हॉलीवुड अच्छा बॉलीवुड खराब का नहीं है। एक्चुअली वर्क कल्चर का मतलब ही ये है कि टैलेंट के साथ सिस्टम भी स्ट्रांग हो। हॉलीवुड के बारे में विद्युत ने यह भी हाईलाइट किया कि टेक्नीशियंस को ओवरटाइम के हर एक्स्ट्रा मिनट का पेमेंट मिलता है, मतलब टाइम की वैल्यू सिर्फ एक्टर के टाइम की नहीं, सेट पर काम करने वाले हर इंसान के टाइम की है। और शायद यही वो जगह है जहां बॉलीवुड भी और बेटर कर सकता है। और मुझे लगता है स्ट्रीट फाइटर की ये कहानी सिर्फ विद्युत के हॉलीवुड डेब्यू की नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सिनेमा सिर्फ कैमरा के सामने नहीं बनता, कैमरा के पीछे जो 300 लोग खड़े हैं उनके टाइम, डिसिप्लिन और डिग्निटी से भी बनता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Isca bana, pusca bana, saca bana. Gambana. Burca, burca. La fiesta la burca.
1: Mirchi, burca. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटू सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल, एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: कैंची ले ली सर. लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास
2: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए आसपास के लोगों को भी. सिक्योर करना है.
2: ठीक है. बताइए.
1: हरा काट के देख. धीरे से.
2: 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है. हाँ.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
4: Yep,
5: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: only on रेडियो मिर्ची. It's hot.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। अगर आपको फिल्म इक्का पसंद आई थी और उसके बाद अगर आपको सीरीज शक ट्रस्ट नो वन पसंद आई थी, तो भाई आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने अपने इन दोनों ही प्रोडक्शंस के सेकंड पार्ट पे काम की शुरुआत कर दी है। इट हैज बीन अ गुड 2026 फॉर हिम और उसको वो आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। बाकी आपने अभी तक अगर इक्का या फिर शक ट्रस्ट नो वन नहीं देखी, देन इट इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। 20 साल बेमिसाल हो चुके हैं हमारे अरिजीत सिंह को इन दी इंडस्ट्री, और इसी के उपलक्ष्य पे उन्होंने अपना टूर अनाउंस किया है। इट इज द बिगेस्ट एवर इंडिया टूर, जो शुरू होगा जनवरी में एंड इट इज गोना कंटिन्यू टिल मई नेक्स्ट ईयर। शुरुआत होगी जिसकी अहमदाबाद में और खत्म होगा ये इन हैदराबाद। बाकी के शहर जहां पे इनका ये टूर होगा इस चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, पुणे एंड इंदौर। वो पंजाबी आ गए ओए, पूरी दुनिया पे छा गए ओए। और दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर से अपना टूर अनाउंस किया है। हां जी, इंडिया टूर की बात कर रही हूँ, दी ऑरा टूर विच इज गोइंग टू बी अ 7-सिटी एक्स्ट्रावागांजा, और ये कंटिन्यू होगा अक्रॉस नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर। शुरुआत होगी इसकी दिल्ली के JLN स्टेडियम से एंड इट इज गोना कमेंस एट चंडीगढ़। बाकी नॉट टू मेंशन, वी एज रेडियो मिर्ची आर द ऑफिशियल प्राउड रेडियो पार्टनर्स फॉर दिस ऑरा टूर। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय, मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, चलिए उनको लगाम लगाइए, वापस आइए। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि इस गेम की शुरुआत होती है आपके डीएम्स के जरिए। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है आशीष फ्रॉम गाजियाबाद। तो सर, क्या तैयार है आप मेरे सवालों का सिलसिला झेलने के लिए?
3: अरे बिल्कुल तैयार है।
0: ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो रोड कॉन्ट्रैक्टर बने हैं,
3: खट्टा मीठा।
0: खट्टा मीठा में अवार्ड अंशुमन कौन है?
3: अवार्ड अंशुमन जॉनी लीवर।
0: यस, जॉनी लीवर किस फिल्म में भूला है?
3: गोलमाल।
0: कौन सा पार्ट?
3: गोलमाल 3।
0: यस, गोलमाल 3 में उंगली तोड़ने का चस्का किसको होता है?
3: अजय देवगन
0: की फिल्म जिसमें बंदर गाड़ी चलाता है।
3: बंदर गाड़ी चलाता है, इश्क।
0: यस इट इज इश्क। में नकली चाकू से चे चू कौन करता है?
3: आमिर खान
0: किस फिल्म में पूरे इंडिया में रन करते हैं?
3: आमिर खान, ओ लाल सिंह चड्ढा।
0: यस इट इज लाल सिंह चड्ढा। में उनको किससे प्यार होता है?
3: करीना कपूर
0: दो अलग अलग स्टाइल के फुटवेयर्स किस फिल्म में पहनती हैं?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: कुछ ज्यादा ही जोर से फिल्मची अंदर से जाग रहा है आपका। कभी खुशी कभी गम में धरती पे पैर रखते ही अपने बेटे के बारे में किसको पता चल जाता है?
3: वो जया बच्चन।
0: हाँ, जया बच्चन। रणवीर सिंह की सड़ू दादी किस फिल्म में बनी है?
3: सड़ू दादी रॉकी रानी।
0: यस इट इज रॉकी रानी की प्रेम कहानी में टीवी एंकर कौन है?
3: अपनी आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में थेरेपी लेती है?
3: डियर जिंदगी
0: में डॉक्टर जग कौन है?
3: अपने शाहरुख खान
0: किस फिल्म में किरण बोलते हैं?
3: ये नहीं पता मुझे।
0: ये कैसे नहीं पता भाई किसी इंसान को?
3: किरण नहीं, ये नहीं पता मुझे।
0: मतलब मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये मूवी किसी को नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, दैट वॉज

तो देखते हैं कि ये आगे का गेम कौन कंटिन्यू करने वाला है. यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजना है. बाकी आई विल टेक केयर ऑफ. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: और आप तो सिर्फ प्यार नहीं फुल ऑन एंथुसियाज्म के साथ ये गेम खेलते हो यार। अरे मैं तो मिर्ची फिल्मची की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो। सो बेसिकली आज इस गेम की शुरुआत हुई थी आशीष से, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट एंड उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है सुश्रुत। हाय सुश्रुत, कैसे हो आप?
3: एकदम बढ़िया, हो श्रुति?
0: आई एम ग्रेट। मुझे आपका नंबर मेरे डीएम से मिला, मैंने सोचा आपको कॉल करके पूछ ही लेती हूँ क्या गेम खेलोगे, कंटिन्यू करोगे।
3: ब्रिंग इट ऑन।
0: ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैं तो नोएडा से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो चलिए फिर, शाहरुख खान किस फिल्म में किरण करते हैं?
3: डर।
0: डर में जूही चावला की एंगेजमेंट किससे होती है?
3: सनी देओल।
0: सनी देओल हैंड पंप किस फिल्म में उखाड़ते हैं?
3: गदर।
0: गदर में उनको किससे प्यार होता है?
3: अमीषा पटेल।
0: अमीषा पटेल की डेब्यू फिल्म कौन सी है?
3: कहो ना प्यार।
0: कहो ना प्यार है में सितारों की महफिल में कौन परफॉर्म करता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में विजुअली इम्पेयर्ड वॉइस आर्टिस्ट है?
3: काबिल।
0: सब पता है ना तुझे यार। काबिल में उनकी वाइफ कौन है?
3: यामी गौतम।
0: यामी गौतम की किस फिल्म में स्पर्म डोनेशन की बात है?
3: विकी डोनर।
0: विकी डोनर में स्पर्म कौन डोनेट करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना लड़की बनके फोन पे किस फिल्म में बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: तो इसी बात पे आपने जो इतना अच्छा गेम खेला है उसके लिए मैं आपको टैग दूंगी, बट पहले मुझे लड़की के स्टाइल में बोल के दिखाओ ना यार।
4: हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ।
0: पूजा, मैं तो सुश्रुत से बात कर रही थी।
4: वो मेरा दोनों चलता है।
0: How sweet यार, such a sport you are. Thank you so much सुश्रुत।
3: Thank you श्रुति।
0: तो ये है हमारे आज के दूसरे
1: मिर्ची फिल्मची।
0: बाकी अगर आपके अंदर के फिल्मची को फोमो हो रहा है, then worry not my friend, ये सिलसिला हर दिन जारी रहता है। तो कल के गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी ही मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेज डालो। Till then stay tuned to मिर्ची, it's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो थोड़े मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: जितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बट मैं नहीं छोड़ना चाहती यार, नहीं छोड़ना चाहती डिस्कशन अबाउट नैना। हाँ जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रेम, राज, राहुल, ये सारे नाम काफी ज्यादा यूज किए गए हैं अगर मेल कैरेक्टर्स की बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ अगर फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो एक नाम है जो काफी ज्यादा यूज किया गया है, बट इस नाम को और इस कैरेक्टर को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं नैना नाम के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ इन द लिस्ट। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट नैना फ्रॉम कल हो ना हो। अब नंबर दो पे मैं बात करना चाहती हूँ ये जवानी है दीवानी वाली नैना की। साल 2013 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, स्टारिंग रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण इन लीड रोल्स। और जहां तक बात है दीपिका पादुकोण के इस कैरेक्टर की, तो वो एक शाय इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली लड़की है जो एक स्कॉलर भी है। हाँ, काफी ज्यादा तेज है पढ़ाई में। बट इन सारी चीजों से हटकर वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेती है टू गो ऑन अ ट्रैक विद हर ओल्ड क्लासमेट्स, और वहां पे उसको अपने लाइफ की फिलॉसफी समझ में आती है। वो अपने आप को रीडिस्कवर करती है और अपने अंदर जो उसका फ्री स्पिरिटेड नेचर होता है उसको ढूंढती है। एंड बाबू मोशा, ये सारी चीजें ही तो हैं जो नैना को मोस्ट मेमोरेबल एंड रिलेटेबल कैरेक्टर बनाती है ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स जो दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट रानी मुखर्जी का कैरेक्टर नैना इन द फिल्म हिचकी। नैना माथुर नाम होता है इनका, जो एक अनबीटेबल क्वेस्ट पे निकलती है। वो एक फाइटर है जो टीचर बनने के अपने ड्रीम को पूरा करना चाहती है डिस्पाइट हर टॉरेट सिंड्रोम एंड द सोशल सेटबैक्स शी फेस्ड थ्रू आउट हर लाइफ। ग्रेट थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर, राइट? वेल, मेरे पांच का पंच की लिस्ट में अभी और दो नैनाओं की बात करूंगी, बट इन अ वाइल, तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: नैना, नाम तो सुना होगा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया गया है इस नाम को, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, अनलाइक प्रेम, राहुल एंड राज। तो मैंने सोचा आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी सिनेमा के कुछ नैना कैरेक्टर्स की बात करूं। वेल, इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट नैना फ्रॉम कल हो ना हो, नंबर दो पे वी टॉक्ड अबाउट नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, नंबर तीन पे हिचकी वाली नैना की बात हुई, और अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट नैना कपूर फ्रॉम अंग्रेजी मीडियम, प्लेड बाय नन अदर देन करीना कपूर खान। अंग्रेजी मीडियम ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय होमी अदजानिया, और इस फिल्म में इरफान खान, दीपक डोबरियाल, राधिका मदन और करीना कपूर खान साथ नजर आए। एंड टॉकिंग अबाउट नैना कपूर का कैरेक्टर, उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम भले ही नहीं मिला, बट इस लंदन बेस्ड कॉप ने अपने फियर्स और बोल्ड अवतार के साथ हम सबका दिल जीत लिया। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म बदला से नैना के कैरेक्टर की, जिसको प्ले किया तापसी पन्नू ने। फिल्म में नैना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जिसको तापसी पन्नू ने एक अलग डिफरेंट लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। उनका ये कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट में इजिली ब्रैकेट नहीं किया जा सकता। द कैरेक्टर इज यूनिक, ग्रिपिंग एंड मिस्टीरियस, विच मेक्स हर अनफॉरगेटेबल। और अगर आपने अब तक ये मूवीज नहीं देखी, देन प्लीज इन कैरेक्टर्स के लिए इन मूवीज को जरूर देख लेना। In the meantime, आगे आने वाले गाने enjoy कर लेना, right here on Mirchi with this लड़की बड़ी फिल्मी, It's Hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची, मिर्ची, टॉप, टॉप, टॉप, टॉप, टॉप, ट्रेंडिंग। अगर आपको फिल्म इक्का पसंद आई थी और उसके बाद अगर आपको सीरीज शक ट्रस्ट नो वन पसंद आई थी, तो भाई आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने अपने इन दोनों ही प्रोडक्शंस के सेकंड पार्ट पे काम की शुरुआत कर दी है। इट हैज बीन अ गुड 2026 फॉर हिम, और उसको वो आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। बाकी आपने अभी तक अगर इक्का या फिर शक ट्रस्ट नो वन नहीं देखी, देन इट इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। 20 साल बेमिसाल हो चुके हैं हमारे अरिजीत सिंह को इन दी इंडस्ट्री, और इसी के उपलक्ष्य पे उन्होंने अपना टूर अनाउंस किया है। इट इज द बिगेस्ट एवर इंडिया टूर, जो शुरू होगा जनवरी में एंड इट इज गोना कंटिन्यू टिल मई नेक्स्ट ईयर। शुरुआत होगी जिसकी अहमदाबाद में और खत्म होगा ये इन हैदराबाद। बाकी के शहर जहां पे इनका ये टूर होगा इस चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, पुणे एंड इंदौर। वो पंजाबी आ गए ओए, पूरी दुनिया पे छा गए ओए। और दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर से अपना टूर अनाउंस किया है। हां जी, इंडिया टूर की बात कर रही हूँ, दी ऑरा टूर विच इज गोइंग टू बी अ 7-city एक्स्ट्रावागांजा, और ये कंटिन्यू होगा अक्रॉस नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर। शुरुआत होगी इसकी दिल्ली के JLN स्टेडियम से एंड इट इज गोना कमेंस एट चंडीगढ़। Like, not to mention, we as Radio Mirchi are the official proud radio partners for this Aura Tour. Mirchi pe main hoon Shruti, aapke saath. Stay tuned, it's hot.

0: बॉय बन जाता हूँ।
1: yeah. उड़ती हैं खबरें लेता ना स्ट्रेस। no. गेम का कार्टर ऑन टू द नेक्स्ट। हो प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस। मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

वेंसडे है दोस्तों, यानी ना वीकेंड का स्ट्रेस ना मंडे का मेस। बस बीच की ये शाम जो कह रही है थोड़ा मुस्कुरा लो, लाइफ उतनी भी सीरियस नहीं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि जो आपके मिडवीक को बनाएगी फुल ऑन हैप्पी मोड में शानदार। वैसे आज का जो न्यू जर्सी का वेदर है ना, वो यार देखकर बस एक ही गाना मन में आता है कि हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मतलब एकदम फिल्मी लग रहा है, थोड़ा ब्रीजी, थोड़ा सनशाइन विद दैट पम्पकिन स्पाइस स्मेल इन द एयर। और ट्रैफिक में तो लोग यार थोड़ा बहुत विंडोज खोल के भी चल रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत सी प्लेलिस्ट, मिर्ची की प्लेलिस्ट बैकग्राउंड में चल रही है। और ऐसे मूड में ना यार चाय भी और अच्छी लग जाती है, इफ नॉट चाय कॉफ़ी भी बहुत ही मीठी लगती है, मुस्कुराहट भी कंटेजियस हो जाती है। सो टुडे मिर्ची सिद्धि का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, नो स्ट्रेस नो ड्रामा, बस गुड वाइब्स का जैम। और पता है फील गुड वाइब्स ना हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं आती, मतलब कभी कभी सिर्फ एक रैंडम कॉम्प्लीमेंट भी अगर दे दो ना तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आती है, और एक प्यारा सा गाना बजा दो ना तो भी वो मुस्कुराहट आ जाती है। तो चलिए वेंसडे की शाम में आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर मूड सॉन्ग फॉर टुडे। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि, और तब तक के लिए आपके लिए ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेन करनी है कर दे,
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक ज़माना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकौड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें अब पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मी और इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज़ माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

नवरात्रि की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची नौ लक का हार। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में। तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन। और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वीरानी ज्वेलर्स ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद है वो आप चूज कीजिए, और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए। मोर डिटेल्स @VIRANIJewelers.com। और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, मिर्ची नौ लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के डीएम कर दीजिए। और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है. आस पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे, बिल्कुल. फटना नहीं चाहिए आस पास के लोगों को भी.
2: ठीक है.
1: एक बार हरा काट के देख.
2: हरा काट रहा हूँ.
1: धीरे से.
2: 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी लाइफ में सब कुछ सेम लगने लगता है, मतलब सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम गोल्स, पर फिर भी हम थोड़ा पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या इसे बेटर बना सकते हैं। और अक्सर जवाब होता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रीथिंक, थोड़ा सा रीसेट और चीज़ें ज़्यादा अलाइन लगने लगती है। आजकल चेंजिंग मार्केट में भी लोग यही कर रहे हैं, जो उनके पास है उसे ही स्मार्टर बनाने की कोशिश। और जब बात घर की आती है तो ये रीथिंक एक स्मार्ट मूव बन सकता है, जिसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। और इसी को सही तरीके से कैसे समझे और कब ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, यही बताने आ रहे हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची का
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है।

0: और एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saath Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, एआर रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना

कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें यार पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जहाँ। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटिफुल मेलेडीज़ है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जहाँ का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओहो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम द मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज़ दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता है ना आँखों आँखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepe Milciu. Discabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकत कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं हेलो?
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो, ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना ये है 9th level, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: हेलो दोस्तों, आज है वेंसडे यानी हम डे यानी आधा हफ्ता तो क्रॉस हो चुका है और गोल्ड मार्केट भी आज थोड़ा नीचे की तरफ सीधा स्लाइड करते हुए नजर आ रहा है। दैट्स राइट, गोल्ड स्पॉट अराउंड $4,113 पर ट्रॉय औंस, व्हिच इज रफली 1.2% डाउन कल से। तो गोल्डन आवर में यार, गोल्ड का रेट तो हमने बता ही दिया है, लेकिन हम डे का बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि वीकेंड ना अभी दूर नहीं है और इस वीकेंड ओक ट्री रोड पर गोल्ड की चमक के साथ बॉलीवुड के सुर भी जुड़ने वाले हैं, बिकॉज राज जूल्स इज ब्रिंगिंग बॉलीवुड जैमिंग ऑन सैटरडे अक्टूबर 10 शाम 5 से 8 बजे तक उनके पार्किंग लॉट में, विच इज एट 1376 ओक ट्री रोड अजलिन न्यू जर्सी। यानी लाइव म्यूजिक होगा, बॉलीवुड बीट्स और फुल ऑन जैमिंग मोड, और इसके बारे में हमें और भी जानकारी देंगी तन्वी। सो हे तन्वी, वेलकम टू टुडे शाम शानदार।
1: Hi Siti, how are you doing?
0: We are doing really great and Wednesday के जो मूड है हमारा वो ऑलरेडी वीकेंड की तरफ देख रहा है और वीकेंड का प्लान तो आपने हमारे लिए बना ही लिया है, तो प्लीज इस बॉलीवुड जैमिंग के बारे में थोड़ा और बताइए हमें।
1: Yes, so we are very very excited. हम लोग जो प्लानिंग चल रही है हमारी जोर से चल रही है and we have a huge lineup of show. So I will start as let's talk about what we are going to have, what people can expect in this event. So hamara we will start with yoga, basically tali yoga, then laughter yoga. We will also have a sitar player, tabla player, and then we will have actual Bollywood dance, and then jamming followed by bhajan jamming. So that's how we are going to wrap up the whole show.
0: Kya baat hai,
1: yani that's the plan. Yeah.
0: यानी 3 घंटे फुल ऑन पैक्ड होने वाले हैं दोस्तों। देखिए, योगा से लेकर बॉलीवुड म्यूजिक से लेकर डांस से लेकर जैमिंग एंड भजन क्लबिंग भी। तो दोस्तों पहुंच जाइए अक्टूबर 10th विच इज सैटरडे शाम 5 to 8 PM 1376 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी, जो कि है हमारे राज जूल्स का पार्किंग लॉट। तो वहां पर हम सब आपसे मिलेंगे क्योंकि वहां पर होने वाला है लाइव म्यूजिक, बॉलीवुड बीट्स, फुल ऑन जैमिंग मोड। दैट्स राइट तन्वी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपका बेसब्री से इंतजार है, जरूर आइएगा अक्टूबर 10th 3 PM onwards।
0: क्या बात है। तो देखिए, वैसे तो ऑफिशियल टाइम 5 to 8 है, लेकिन एवरीबडी इज गोना लाइन अप एट 3 PM। सो दोस्तों, आई विल सी यू ऑन सैटरडे 3 PM onwards अक्टूबर 10th ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी राज जूल्स के पार्किंग लॉट पर टू एक्सपीरियंस वन फुल अमेजिंग बॉलीवुड जैमिंग राइड। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त 10 डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट हिट हिट हिट गाना।

0: जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से
1: एक दो तीन तो बस दिन गिन गिन के रह गए हैं नवरात्रि के। लेकिन दोस्तों इस बार सिर्फ दिन मत गिनो, गोल्ड जीतने के चांसेस भी गिनो। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और नवरात्रि की एक्साइटमेंट ऑलरेडी हवाओं में है क्योंकि यार आउटफिट से लेकर प्लान से लेकर फेस्टिव शॉपिंग सब कुछ शुरू हो चुका है और इसीलिए जब काउंटडाउन इतना स्पेशल है ना तो सेलिब्रेशन भी ना थोड़ा और गोल्डन होना ही चाहिए। तो इसीलिए वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार, यानी नवरात्रि की 9 नाइट्स और 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जहां लकी विनर्स के पास एक मौका है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन। तो अब 1 2 3 करके दिन गिनने के साथ अपना नाम भी गेम में गिनवा लो क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आपको व्हाट्सएप करना है हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप करना है नवरात्रि, आपका नाम, आपका नंबर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। बस आपको टाइप करना है नवरात्रि और आप हो जाओगे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर्ड। और दोस्तों फेस्टिव सीजन की चमक वीरानी ज्वेलर्स पर फुल ऑन धमाके के साथ चालू है विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो यार काउंटडाउन मेरे फेवरेट स्टाइल में 1 2 3 नवरात्रि के दिन गिन और 9 रातें 9 गोल्डन चांसेस टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन्स। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। और जब ओपनिंग यार इतनी 1 2 दिन से शुरू हुई है तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग भी माधुरी स्टाइल बनता है, तो वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस।

0: दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही होंगी। किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चे को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफ़रों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफ़र का हिस्सा बनी है तो मुझे ज़रूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Mirchi.
2: Escabana, buscabana, sacabana.
3: Grabana.
2: Burga, burga. La virba, la burga.
3: Mirchi, burga.
4: Hello?
5: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
4: सर?
5: एक लाल है, एक हरा है, कौन से काटूं सर?
4: टाइम कितना है
5: सर? डेढ़ से दो मिनट.
4: पीछे हो गया
5: फिर कटेगा कैसे?
4: भारी सामान
5: तो नहीं है सर.
4: रंग बता.
5: एक लाल, एक हरा.
4: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
5: एक सेकंड, कैंची ले ली सर. लेकिन सिचुएशन है.
4: आसपास कोई भी नहीं है.
5: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
4: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
4: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
5: ठीक है.
4: हरा काट के देख.
5: धीरे से. 1, 2, 3. Congratulations.
4: ताली बज रही है. कौन है?
5: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
4: शोरूम का रिबन काट रहा
5: है.
4: हाँ.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: ये पकड़ा.

इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक ज़माना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया। और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है, लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना लेते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है, तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉकस्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देयरली बने ही थे, हमने एक दूसरे से कहा नहीं था, बट फीलिंग्स वर देयर. और वो और मैं उसका बैग ठीक कराने गए.